0: से चार दशम आठ मेगाहर्ज।
1: आफ्नै फिल्म टाइम चेक।
2: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
3: टाइम चेक का साथमा ओम दयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिर माथि ओखलढुङ्गा।